0: तुम्हारा जो भी काम हो मुझसे कहा कर, मैं कर दूँगा।
1: अच्छा बेटे, अब तो जाके सो जा।
0: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ।
1: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूँ।